फिर बांधी जग खेले आपे कीमत पाई आपे भवर फुल फल तरवर आपे जल थल सागर सरवर आपे माच काच करनी।

बित जाता। उधर संजोगी धरती माता रैन दिनस दुदाई दाया, जग खेल खेलाई है आपे मछली आपे जाला, आपे गऊ आपे रखवाला, सर्ब जिया जग जोत तुम्हारी, जैसी प्रभु फरमाई है आपे जोगी आपे भोगी, आपे रसिया परम संजोगी।

देवानी शब्द सहज रस अंतरमानी आपे मुक्त तृप्त वरदाता भगत भाए मन भाई हे आप निरालम गुर गम ज्ञाना जो दिसै तुझ माहे समाना नानक नीच पिछिया दर जाचै मैं दीजै नाम बढ़ाई हे मारू महला पहला आपे तरती तौले अकासं आपे साचे गुण परगासं जति सती संत।

इस मात पिता सुत प्राता सगले सैल उपाय समाए अलख न लखना जाई ही कर कर थाकी मीत कनेरे कोई ना काटे अवगुण मेरे सुर नर नाथ साहिब सबना सिर पाए मिले पहु जाई है भूले चूके मार्ग पावे है आप भुलाए तू है समझावे है बिन नावे मैं अवर ना दिसे नाम गत मित पाई है गंगा जमुना केल केदारा कांसी कांति पुरी द्वारा गंगा सागर बेणी संगम अठ सठ अंक सम

परम भेद पौ जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला, आप अपुल ना कबहू पुल्ला। आपे मेहर दया पत दाता, ना किसे को बहराई है। जिस बख्शे तिस दे वड्याई, सब सै दाता तिल ना कमाई। पर पुर धार रहया ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या सलाही अगम अपार है।

चोली घर वर सहज ना जाने शोहर बिन फिर नींद ना पाई अंतर अगन जले पड़कारी मनमुख तके कुंडा चारी बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है साचे हाथ वडाई है काम क्रोध अहंकार निवारी तस्कर पंच शब्द संघारी ज्ञान खड़गले मन स्यों लूजै मनसा मन है समाई है माँ की रकत पिता बिद धारा मूरत सूरत कर आप

करना, गुरते समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर देख है, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पौ खाया, तावत राखे ठाक रहाया। कमल विगास हरे सरस पर, आत्म राम सखाई है। मरण लखाए मंडल मह आई, क्यों रही है चलना पर थाई। सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिले वडाई है। आप उपाया जगत सुबाया।

प्रिय निर्मल एक निरंजन दाता गुरपूरे ते पत पाई है। जुग जुग विरली गुरमुख जाता साचा रव रहया मन राता तिसकी ओट गही सुख पाया मन तन मैल ना काई है। जीव रसायन साचै राती हर प्रभ संगी पौ ना प्रांति श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी ज्योति ज्योत मलाई है।

दोए पग धर्म धरे करनी तर गुरमुख साचित थाई हे राजे धर्म करह परथाई आसा बंदे दान कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई थाके कर्म कमाई हे कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही मुक्त पदार्थ शब्द सलाही बिन गुर शब्द मुक्त ना होई परपंच कर परमाई हे माया ममता।

आतिश काल समताई ही गुरमह आप रखिया करतारी गुरमुख कोट असंख्य उधारी सर्व जिया जग जीवन।

गुरमत जाती, मनमुख सोए रहे से लूटे, गुरमुख साबत पाई है। कूड़े आवे कूड़े जावे, कूड़े राती कूड़ कमावे।

हमहु भूली चोटा खाई बहुत सियाण भरम ना जाई पच पच मोए अचेत ना चेत है अजगर भार लदाई है बिन बाग बरोदै कोई नाहीं मैं दिखा लियो हो तिस सलाही मन तन अर्प मिलै जग जीवन हर त्यों बणत बनाई है प्रभ की गत मित कोई ना पावे जे को वड्डा कहाए वडाई खावे साचे साहेब तोट ना दाती सगले तिनह अपाई है वड्डी वड्याई वे परवाहे आप अपाए दान समाहे आप दयाल दूर नहीं दाता मिलिया सहज रजाई है एक सोगी एक रोग वे आपे जो किछ करे सो आपे आपे भगत पाओ गुर की मत पूरी अनहद शब्द लखाई है एक नांगे भूखे पवह पवाए एक हठ कर मरह ना कीमत पाए गाते अवगत की सार ना जाने बूझै शब्द कमाई है एक तीर्थ नाव है अन्न ना खाव है एक अग्न जलाव है देख पाव है राम नाम बिन मुक्त ना होई केत बिद पार लंघाई है गुरमत छोड़ उजड़ जाई मन मुख राम ना जपै अवाई पच पच बूढ़ है।

दिसह संगत कुल तारे साच परिसह कल मल मैल नाही ते निर्मल होए रह भगत लिवलाई बूझो हर जन सतगुर बाणी एहो जोबन सास है दे पराणी आज काल मर जाइए प्राणी हर जप जप हृदय त्याई हे छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा कूड़ मारे काल उशाहाड़ा साकत कूड़ पचह मन हमै दोह मार्ग पचह पचाई हे छोड़ो हो निंदा तात पराई पढ़ पढ़ दज है शांत मायाई मिल सत संगत नाम सलाहो आत्म राम सखाई हे छोड़ हो काम क्रोध बुरियाई हम मैं तंद छोड़ हो लंपटाई सतगुर सरन पर हो ता उबर हो यूं तरिय पव जल पाई हे आग्या बिमल नदी अगन बिख झेला जिथे अवर न कोई जियो अकेला।

मुक्त नाही नर निंदक डूबह निंद पराई हे बोलो साच पछाणो अंदर दूर नाही देखो कर नंदर बिघन नाही गुरमुख तर तारी इउं पव जल पार लंघाई हे देही अंदर नाम नवासी आपे करता है अबनासी ना जियो मरे ना मारिया जाई कर देखे शब्द रजाई हे ओह निर्मल है नाही अंधियारा ओह आपे तख्त बह सचियारा साकत कूड़े बंद पवाई है मर जन्म है आई जाई हे गुर के सेवक सत गुर प्यारे ओए बैसह तखत सो शब्द विचारे तत लह अंतरगत जा।

कोई बिन गुर बजर कपात ना खूल है, शब्द मिले निस्तारा ही, बिरध पया तन सीज देही, राम न जपई अंत

कूड़ियारू आवत जात पड़े सिर चारू सहुरड़ करवास न पाई पेयड़ सिर माराही खाजै पेंजै रली करीजै बिन अब भगती।

सागर अत गहरा गुर सतगुर पार उतारा ही मनमुख अंदले सो जी नाही आवह जाहे मरह मर जाही पूर्व लिखिया लेख न मिटई जमदार अंध खुआरा ही एक आवह जावह कर वास न पावह किरत के बांधे पाप कमावह अंदले सोजी बूझ न काई लोभ बुरा अहंकारा ही फिर बिन क्या तिस धन सिंगारा पर फिर राती खसम बसारा ज्यो बेसवा पूत बाप को कही है त्यों फोकटकार विकारा ही प्रेत पिंजर मह दुख कनेरे नरक पचह

अगन बेख चाला पत पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावे रोग बुरा बुरे आ राही मस्तक पार कलर सिर पहरा क्यों कर भवजल लंगस पारा सतगुर बोहित आदि जुगादी राम नाम निस्तारा ही पुत्र कलत्तर जग हेत।

पाई। मनमुख दा जय पढ़ पढ़ पाही, अमृत नाम गुरु वद दाना, नाम जपो सुख साराही, सतगुर तुठा सच दृढ़ाई, सब दुख मेटे मार्ग पाई, कंडा पाई ना गडई मूले,

करे बहुतेरे नरक सुर्ग अवताराही माया देख पोए अंगम नाली इन दुबदा कर बहुते गाली सतगुर बाज हो प्रीत ना उपजै भगत रते पतिया राही साकत माया कौ बहुतावह नाम वसार कहां सुख पावह त्रेहो गुण अंतर।

नाम प्रगास मेरे मीत गुरुदेव मो कौ राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई

हर हर नाम मिले त्रिपदास है, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गूजरी महला पंजवा, काहे रे मान चित भय उद्दमा। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मह जंतो पाए। तां का रिजक आगै कर धरया, मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सुके काष्ट हरिया रहा।

आज संगरे आए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम है शाड कोई अवर न त्याहू जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक से

आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज से ती मन वजियां बधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्द।

सफल दर्शन काल मुहूर्त प्रभ है पियो बनहारा कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा वड्डी वड्याई अचार

अंतर जामी पुरख बिदाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मोक कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

0: केरबू दी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.
3: Asankh jap asankh pao,
4: asankh jap asankh pao,
3: asankh puja asankh tap tao,
4: asankh puja asankh tap tao,

0: असंत भगत गुण ज्ञान विचार,
1: असंत भगत गुण ज्ञान विचार,
0: असंख सती असंख दातार,
1: असंख सती असंख दातार,
0: असंख सूर मोह पाक सार,
1: असंख सूर मोह पाक सार।

किले विच पहुंचे शाह बाज सिंह नूं बाबा जी ने कालज दे नाल ला लिया। उधर रात पै गई, दिन चलन वाला होया। शाह बाज सिंह ने सारे मोर्चे दी तोपां भी दित्तियां। दिन चढ़दे नाल दिल्ली दे वजीर दीन मुहम्मद ने 7000 फौज दे नाल किले दे उत्ते हमला कर दिता। मुगल बिल्कुल किले दे नेड़े पहुंच गए। उधर बाबा जी ने सतगुरां दे बख्शे 5 तीरां विचों 3 तीर कढ़े, थाओ थाई तीर इउं टकाउंदे रहे।

लड़दिया रात पै गई। रात के हनेरे विच मुगलों ने किले के घेरे नूं होर तंग कर लिया। अद्धी रात जदों एक बजिया बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने उठ के सारे सिंघां नूं जगाया। सिंघां ने धन गुरु ग्रंथ साहब के अगे अरदास की है, जोर जी पंज जकारे छड़े है, अराके दे उत्ते काठियां पाईए, 7000 मुगलों के घेरे बीती। बाबा बंदा सिंह बहादुर सिंघां समेत मुगलों नूं बढ़दा होया रात के अंधेरे विच तीर इउं हो गया बई।

0: केरबोदी रंगीली तरसी दिवस मीक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CIFK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह वी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

के रूप ना उन्हां दा रूप नहीं कथिया जा सकता। जिन्हां ने प्रो लिया अपने आप नूं, नाम च प्रोए गए ने जिहड़े रंगे होए ने, हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा नरारी रे। अब है ना जाहे ना कब हूं मरते, पार ब्रह्म संघारी रे। भाई तारू सिंह उस वेले आखन लगे, तारू सिंह तेनू लैण आए हैं, तेरिया शिकायतां अपनिया ने सूबेदार ने तेनू बुलाया है, लाहौर लैके जाना है। भाई साहब तारू सिंह आखन लगे, तुहाडे नाल चलने आ, पहला ये दसो भी जल पड़ी छगिया है, इन्ने बंदे 500 सवेर दे तुरे हो, पिंड वालों को आख्या कुछ सिखाया सेवा की है? वो कहते जी साहब से सवेर दे सहीमे बैठे, सारा पिंड डराया लुट के ले जाएंगे, तुम्हें दसिया क्यों नहीं तारू सिंह बारे? कहते पहला इन्हों की सेवा करो, ये भी ड्यूटियां कर रहे ने हुक्म विच, इन्हों का की कसूर? जेडे सिपाही लैन आए ने पहला इन्हों की सेवा करो। कहते सारे पिंड वालों को ला के प्रशादा छकाया, उन्हों की सेवा की। कहते मिलना जिन्हों मिलना है, भाई तारू सिंह अपनी मां लगा ना मिलन, मां उस वेले आखन लगी, पुत्रा तेरा मैं नाम रखिया तारू सिंह, तेरा पिता भी शहीद होया सी, ओदी खबर आई सी शहीद हो गया है, ते मैं उदों भी शुक्र मनाया सी, लिख के लगा धर्म दे, मरना एक दिन सामने है, तेरा नाम रखिया तारू सिंह, जुलम दे दरिया नूं तैर के लंघ गई डरी ना, तारू है ते तारू बन के बनाई। तुहानूं पता है जिन्हों आप जिहड़ा तैरन जाणदा होवे, आपां कहिंदे बड़ा तकड़ा तारू है, कई कई घंटे पानी विच तैरदा, पुट्ठा भी तैर लैंदा, सिद्धा भी तैर लैंदा, आपां कहिंदे हां ना, उह कहिंदे तारू है ते तारू बन के विखाई, हुण डुब ना जाई, परचे करने पैणगे, इम्तिहान होणगे, डोली ना पुत्रा पता ही होण लगना है, पता ही होण लगना। उस वेले भाई तारू सिंह ने मां नमस्कार की, असीस लई मां थापड़ा दे के तोड़, ते मेरे लिए अरदास कर कि मेरा मन ना डोले। अरदास कर मेरा मन ना डोले। गुरु का सिख हमेशा ही अरदासा करता है, दौलत ते रख प्रभु नानक दे कर हथ, हथ सिर ते रखियो मन ना डोले कभी। भाई साहब जदों लगे आए वापस, भैन सी जवान, वह भी कहिंदी वीरा यही सुनेहा आवे, तेरा भरा हादसा शहीद होया, डोलिया इहदा हथ कोई आ के। भाई तारू सिंह जी देखो सब लई लंगर लाया, सारा पिंड रोंदा सी, उदन मुसलमान पिंड सी, सारे हिंदू भी सी, पर भाई साहब का सारे प्यार करते, क्योंकि सारिया कौम माड़िया नहीं होंगे, कुछ बंदे माड़े होंगे, हिंदू सारे माड़े नहीं कुछ बंदे माड़े ने, मुसलमान सारे माड़े नहीं कुछ माड़े ने, सिखा च भी गदार है ही। हरिमंदर साहब कदे ना ढहिंदा जे साडे च गदार ना होंगे, साडी बेअदबी क्यों होंगी है नी, साडे च ते गदार है ने, समझौता करन वाले कदों कीड़े केड़े बंदे ने, किहदी झोली च जा पैणा पता ही नहीं लगता, आपां वेख नहीं आ रोज, ते साडियां विच वी घाटा है आ, पर सारा पिंड अज खलोता है, खलोवे भी क्यों ना, जिहड़ा कदे किसे दी मदद करता है, दुनिया रोंदी है उहनां नूं याद कर करके, जिन्हें कोई कौम लई सवारिया कौम की सेवा की है उन्होंने भुलाया नहीं जा सकता। पर मना च झाती मार के वेखो, समाज की सेवा करने वाले दुनिया याद रखती। मैं बेनती बड़ी बारी की मैं कहीं करता हूं, कली माला फेरन गल नहीं बनेगी, कली माला फेरन कभी

फिर बांदी जग खेलै आपे कीमत पाई आपे भवर फुल फल तरवर आपे जल ताल सागर तरवर आपे माच काच करनी का।

उधर संजोगी धरती माता रैन दिनस दुदाई दाया जग खेल खेलाई है आपे मछली आपे जाला आपे गऊ आपे रखवाला सर्ग जिया जग जोत तुम्हारी जैसी प्रभु फरमाई है आपे जोगी आपे भोगी आपे रसिया परम संजोगी।

ए देवानी शब्द सहज रस अंतरमानी आपे मुकत तृप्त वरदाता भगत भाए मन भाई।

चोली घर वर सहज ना जाने शोहर बिन फिर नींद ना पाई है अंतर अगन जले पड़कारी मनमुख तके कुंडा चारी बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है साचे हाथ वडाई है काम क्रोध अहंकार निवारी तस्कर पंच शब्द संघारी ज्ञान खड़गले मन स्यों लूजै मनसा मन है समाई है माँ की रकत पिता बिद धारा मूरत सूरत का

गुरते समझ पड़ी क्या डरना, तू दयाल दया कर देख है, दुख दर्द शरीर हो जाई है, निज कर बैस रहे पौ खाया, तावत राखे ठाक रहाया, कमल विगास हरे सरस पर आत्म राम सखाई है, मरन लखाए मंडल मह आई, क्यों रही है चलना पर थाई, सच्चा अमर सच्चे अमरापुर सो सच मिले वडाई है, आप उपाया जगत सुबा।

बाजी खेल गए बाजीगर ज्यों निस सुपन पखलाई है तिनको तख्त मिली बड़ियाई निरपो मन वस्या लिवलाई खंडी ब्रह्मंडी पताली पुरी त्रे पवन ताड़ी लाई है साची नगरी तख्त सचावा गुरमुख साच मिले सुख पावा साचे साचे तख्त वडाई।

शब्द मलाई जांत से पाना सहज समाई त्रे पवन जोत तरी परमेश्वर अवर न दूजा पाई है जिसके चाकर तिसकी सेवा शब्द पतीजै अलख अपेवा भगतां का गुण का।

दूजै परम भलाई है, गुरमुख जाग रहे दिन राती, साचे की लेव गुरमत जाती, मनमुख सोए रहे से लूटे, गुरमुख साबत पाई है, कूड़े आवे कूड़े जावे, कूड़े राती कूड़ कमावे, शब्द मिले से दरगाह पेंदे, गुरमुख सुरत समाई है, कूड़ मुठी ठगी ठगवाड़ी, ज्यो वाड़ी ओजाड़ उजाड़ी, नाम बिना किस साध ना लागे, हर बिसरे दुख पाई है, भोजन साच मिले

भव भुली चोटा खाई बहुत सियाण भरम ना जाई पच पच मोए अचेत ना चेत है अजगर भार लदाई है बिन बाद बरोदै कोई नाही मैं दिखा लियो हो तिस सलाही मन तन अर्प मिलै जग जीवन हर त्यों बणत बनाई प्रभु की गत मित कोई ना पावे जे को वड्डा कहाए वडाई खावे साचे साहेब तोट ना दाती सगली तिन्हें अपाई वड्डी वड्याई।

समावै नानक साच मिले मन पावै गुरमुख कार कमाई है मारू महला पहला आपे करता पुरख बिधाता जिन आपे आप उपाय पछाता आपे सतगुरे आपे सेवक आपे सिख उपाई है आपे नेड़े नाही दूरे

जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, हर गुण गावे है रसन रसेरे। उस्तत करह पर हर दुख दालत, जिन नाही चिंत पराई है। कोई जागत रह ना सूते दिस है, संगत कुल तार।

आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप जप हृदय त्याई है। छोड़ो हो प्राणी कूड़ कबाड़ा, कूड़ मारे काल उछाहाड़ा। साकत कूड़ पचह मन हमें, दो मार्ग पचह पचाई है। छोड़ो हो निंदा तात पराई, पढ़ पढ़ दज है शांत न आई। मिल सत संगत नाम सलाहो, आत्म राम सखाई है। छोड़ हो काम क्रोध बुरियाई, हम मैं तंद छोड़ हो लंपटाई। सतगुर सरन पर हो ता उबर हो, यूं तरिए पव जल पाई है। आग्या बिमल नदी अगन बिख चेला, तिते अवर न कोई जियो अकेला। पड़ पड़ अगन सागर दे लहरी, पड़ दज है मन मुक्ताई है। गुर पह मुक्त दान दे पाने, जिन पाया सोई बिद जाने। जिन पाया तिन पूछो भाई,

सहुरड़ करवास न पाई, पेयड़ सिर माराही, खाजै तैंजै रली करीजै, बिन अब भगती बाद मरीजै, सर

कोई जिन तन मन दिया सुरत सुनोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बीनाई गुर सरवर हम हंस ते।

सोई फल पावहु साच बखर के वपारी बिरले लैला सौदा किन्नाही हर हर नाम बखर लै चलोह दर्शन पावहु सहज महलोह गुरमुख खोज लह जन पूरे इओ समदर्शी किन्नाही प्रभ बेअंत गुरमत को पावह गुर कै शब्द मन को समझावह सतगुर की बाणी सत सत कर मानो इओ आत्म रामै लीना है नारद सारद सेवक तेरे।

सागरे अत गहरा गुर सतगुर पार उतारा ही मनमुख अंदले सो जी नाही आवह जाहे मरह मर जाही पूर्व लिखिया लेख न मिटई जमदारे अंध खुआरा ही एक आवह जावह कर वास न पावह किरत के बांधे पाप कमावह अंदले सोजी बूझ न काई लोभ बुरा अहंकारा ही पिर बिन क्या तिस धन सिंगारा पर पिर राती खसम बसारा ज्यो बेसवा पूत बाप को कही है त्यों फोकट कार विकारा ही प्रेत पिंजर मह दुख कनेरे नरक पचह

अगन बेख चाला अपात पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावे रोग बुरा बुरिया राही मस्तक पार कलर सिर पहरा क्यों कर भवजल लंगस पारा सतगुर बोहित आदि जुगादी राम नाम नित तारा ही पुत्र कलत्तर जग हेत प्यारा माया मोह पसरिया पासारा जमके फाहे सतगुर तोड़े गुरमुख तत बीचारा ही कूड़ मुठी चाले बहुराही मनमुख दाजे पड़ पड़ पाही अमृत नाम गुरु वद दाना नाम जपो सुख सारा ही सतगुरु तुठा सच दिरडाई सब दुख मेटे मार्ग पाई कंडा पाए न गडई मूले जित सतगुर राखन हारा ही खेहू खेह रलै तन सीजै मनमुख पाथर सहल न पीजै करन पलाव करे बहुतेरे नरक सुरग अवतारा ही माया देख पोए अंगम नाले इन दुबदा कर बहुते गाले सतगुर बाज हो प्रीत ना उपजै भगत रते पतियारा ही थाकत माया कौ बहुतावह नाम विसार कहां सुख पावह त्रेहो गुणे अंतर।

0: भगत जी साडे जेडे गुरु ने परमल नाम है गुरमुख प्यारे चंदन दा सरस कहिए बराबर साडे सतगुर चंदन वर्गे ने चंदन विच घी कोणे ठार पहाड़ है बनस्पत अठारह भार बनस्पत है गुरसिख प्यारे अठारह भार का अर्थ होंगे जिनी बनस्पति है उसका एक एक पत्ता तोड़िया गया जद पत्ते कटे करके भार करे तो अठारह भार बन गए ओनू कहने अठारह भार बनस्पति बहुत बार पाठ आंदा गुरु ग्रंथ साहब विच हर दरखत का एक एक पत्ता तोड़िया सी एक एक पत्ता तोड़ के जद बन्ने करीब तीन कमण का एक भार हुंदा सी ढाई तीन मण का आप चकते हुंदे सी ओ अठारह भार बन गए सी भाई इस करके अठारह भार बनस्पत पिछलियां जातियां दे विच ब्राह्मणा दे विच अठारह गोत हैं वह भी संपर्दा ने अर्थ किया गुरमुख प्यारे ये अठारह भार बनस्पत जिथे एक चंदन का दरख्त हो सारिया नूं चंदन कर दिंदा इसे तरह साडे सतगुर परमल चंदन सरस हैं बराबर हैं जिनी भी संगत उन्हां दी संगत करदी है वह भी चंदन होए जांदे हन ओह भी चंदन होए रहे बसै जो चंदन पास
1: करत कंचन परस
0: साडे सतगुर की ने पारस ने भाई वह लोहे नूं कंचन सेवना करदे ने श्री गुरु नानक देव जी नूं बाबा बुढ़ा साहब जी मिले पारस नूं परस के पारस ही बन गए श्री गुरु अंगद देव जी नूं अमरदास महाराज मिले वह भी पारस रूप हो गए इसे तरह गुरु रामदास महाराज गुरु अमरदास जी नूं मिले वह भी खुद पारस हो गए जिनी संगत इन्हां नूं मिलदी है उन्हां नूं भी अपने बराबर बना दिंदे हन
1: मैल दुरमत हिरत
0: वचन संगत ऐसी है गुरसिख प्यारियो जो खोटी मत दी मैल नाल साडा जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला होआ सिया सिया रूप काला दुरमत दी मैल नाल होया वे ए सतगुरां दा उपदेश सतगुरां दा नाम भरिए मत पापा कै संग ओ तोपै नावै कै रंग हर कहिए नाश कर देण अपने सिख संगतां दी खोटी मत धो दिंदे हन
1: शब्द गुर तिहाई
0: जिहड़े शब्द गुर दा ध्यान भाई पढ़ना जपना आराधना फिर ध्यान लिव जुड़ जानी फिर उन्हां दी खोटी मत दूर हो जांदी है साबण भी पिया होवे कपड़े भी होण पानी भी होण पर जब तक मेल नहीं होवेगा उदों तक मैल नहीं कट होनी सिख पढ़न वाला भी होवे शब्द भी होवे कीर्तन कथा करन वाले भी होण जब तक इहदे विच ध्यान नहीं जुड़ेगा उदे तक मत दी मैल नहीं कट होनी
1: अमृत प्रवाह छुटकंत साध द्वार जिस
0: गुरु रामदास जी की शोभा श्री अमृतसर साहब गुरसिख प्यारे तीन अर्थ ने इस बाणी विच गुरु महाराज का मुख ऐसा है जदों बोलदे ने गुरु रामदास जी अमृत दे प्रवाह ही छुट पैंदे ने अमृत दे झरने ही चलदे ने बाणी उतरे साध जन अमयो चले झरने अमृत प्रवाह छुटकंत साध द्वार जिस दूजा श्री अमृतसर साहब ऐसा रचिया गुरु रामदास महाराज जी ने क्योंकि गुरु अर्जन देव जी दे सन्मुख बैठ के बाणी उतारदे सी उदों हरिमंदर साहब भी बन चुकिया सी ते भीड़ दे बनण दा समय पहला हरिमंदर साहब बने ओ गुरु रामदास महाराज दी नगरी विच हरिमंदर साहब ऐसा दरबार है उहदे चारे दरबारां विचों 24 घंटे अमृत दा ही प्रवाह चलदा होर कोई लफ्ज निकलना ही नहीं गुरसिख प्यारियो फिर तीसरा अर्थ है गुरु की बाणी ऐसी गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप जेड़ी भीड़ रच रहे सी उदों पटां दे सामने वह भी ऐसा एक दर बना दिता ऐसा घर बना दिता है जिथों मर्जी रुमाल चक के दर्शन करके पढ़न लग जाओ अमृत का ही प्रवाह शुरू हो जाए जिथों मर्जी 1430 सफे विचों बाणी आरंभ कर दो अमृत प्रवाह छुटकंत साध द्वार जिस अमृत तो बिना बड़े संत महाराज जेड़े होए ने भाई पिंडरां वाले संत बाबा जी बड़े सारे तो वह तो वचन करते होंगे सी भी जदों सिख रुमाला चक के दर्शन करदे ने कोई श्रद्धावान सिख होवे ता ऐसा लशकारा पैंदा है जिवें बदलां विचों बिजली लशकी होवे ते उन्हां दे बचन ने वड्डियां दे हुण तां कोई दुख मनाउणा मनावे वही भेख पा के पिंडरां वाले कही जांदे अज खे आखो सतनाम चाहे उत्थे जाके मत्था भी ना टेके होवे कोई करनी ना कीती होवे इस तरह ही साडे राड़े साहब है अंदर जाके तो मत्था नहीं टेकते जो नहर नहर नू राड़े दे मूहरे नू लंघ जावे ना वो भी कनेडा आके कहना मैं राड़े आला है आज के अकोसा अंदर भी नहीं बढ़िया नहर नू लंघे है मूहरे कनेडा आले पता नहीं किन्ने ना वो करनी करनी ना उन्होंने शब्द की सिख्या लैनी मां भेग नाले असी संप्रदावां जोड़ लिया गुरसिख प्यारे एहो जी करनी सी उन्होंने महापुरशां की कहने जदों

हम अब गुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिख बिख खाही। माया मोह परम पै पुले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की

कस्तूरी मृग न जाने प्रमदा परम पुलाया अमृत ताज बिख संग्रह करत आप खुआया।

गुणगानोदार महिमा पार सुन पांग उपमान अंग अनुभव प्रकाश निर्जन नाश राजन बाह शान शाह राजन राज पानन पान दीवान देव उपमा महान इंद्रानेन्द्र बालन बाल रंकन रंग कालन काल अनुभूत अंग अपापंग गतमित अपार गुणगान गुणगान उधार मुनगण प्रणाम निर्भने काम आत दुत प्रचांड मृतगत अखंड अलिश कर्म दृश धर्म सर्वा प्रणाड्य अणजंड बाढ़ जाचरी संग तक प्रसाद गोविंदे मकंदे उदारिय पारी हरियंग करियंग निरामे कामे भुजंग प्रया संग चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र भारती चतर चक्र भारती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी संग न सत्र न मित्र न परमंग न पिद्र न कर्मंग न काय जन्मंग जाए न चित्र न मित्र पर पवित्र प्रतिशा दिशा दृशा गृह भगवती शांत प्रसाद काथ ते क्या सज देश क्या पिज बिश है क्या गंज कर्म है क्या पिज भरम है क्या पिज लोक है क्या रित शोक है क्या भूत भरण है क्या भूत करण है कि राजंग प्रभा के धर्म कुजाए क्या शोक भरण है कि सर्वा भरण है कि जगत अंग्रति है कि शत्रुघ्न क्षत्रिय है कि ब्राह्मण स्वरूप है कि अनुपान रूप है कि आदो देव है कि आप अपेव है कि चित्रंग भीन है कि कह दीन है कि रोजी रिजा कर ही मेरे हाक है कि पाक भी ऐब है कि गैबुल गैब है कि आप बोल गुनाह है कि शाह अनशाह है कि कारण कुनिंद है कि रोजी ध्यान है कि राज करीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वदली है के सर्वत्र माने आएंगे सर्वत्र दाने आएंगे सर्वत्र गावने आएंगे सर्वत्र पावने आएंगे सर्वत्र देश आएंगे सर्वत्र पेश आएंगे सर्वत्र राज आएंगे सर्वत्र सुख आएंगे सर्वत्र भूख आएंगे सर्वत्र प्राण आएंगे सर्वत्र त्राण आएंगे सर्वत्र देश आएंगे सर्वत्र पेश के सर्वत्र माने सदैव प्रधान है के सर्वत्र जापे है के सर्वत्र थापे है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीमा के परमंग रही माए के आकुल लामा के साहब कलामा के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा लामा सदीक मदामा गरीब सकाशता गरीब बरासता है बलिंदर मकान है जमीन जवान है तमीज तमाम है रुजु अल दान है हरी फल जीम है रिया की यकीन है अनेक उल तरंग है भेद है पंग है अजीज उल नवाज है अग्निम खराज है निरोक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुजोक्त सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समास्तु बराज है सदा सर्वसाज है समास्तु गुलाम है सदैव लखाव है निर्वास स्वरूप है गाध है अनूप है ओंग आज रूप है नाज रूप है नंगी अनामे त्रिभंगी त्रघामे त्रिभर्ग त्रिवादे सुभंग अगंजिया गाधे सुभंग सर्वभागे सर्वांग रागे त्रिपुक्त स्वरूप है सज है शूद है कि नरक प्रणाश है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रजोक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रजोक्त अनूप है जाचरी छंद अपंग है नंग है पेखा लीख है परम कर्म नाद जगाद है अजय है भय भूत है दूत है ना सब दास है तंद है बंध है अभगत है विरक्त है नास है प्रकाश है नचिंत है सुनंत है लेखा देखा लीख है पेखा टाल गाय समय गम है नीला नाद है अनित है सुनित जाद है जाद है चरपट छंद तक प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हरता सर्वंग करता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता रसावल छंद तक प्रसाद नमो नरक नाशे सदैव प्रकाशे नंगं स्वरूपे अपंगं बुद्धे परमाथं परमाथे परमाथिंग परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्वाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिगामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात नरसाकं श्रीकामितो मही कहें
सदैवं प्रवाह जय जाहे भगवती शांत प्रसाद के जहर जूर है के हाजर हजूर है मेसल सलाम है समातल कलाम है के साहब दिमाग है के उदर जरा गए के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहन दें के राज करें दें करीम कमाल है के حسن الجمال ہیں گنیم الخراج ہیں گریب النواج ہیں حریف الزکان ہیں راس الفکان ہیں کلنکن پرناس ہیں سمالت النواز ہیں اگنجل گنیم ہے ریائے کریحیم ہیں سمالت الجوائیں کہ صاحب گھرائیں کہ نرکن پرناس ہیں بیست النواز ہیں کہ سرب لگوانا ہے میسل دروانا ہے تمام التمیج ہیں سمالت العجیج ہیں پرنگ پرمیس ہیں سمالت العدیس ہیں عدیس العدیخ ہیں میسل بیخ ہیں جمین الجماع ہیں میگل ماہ ہیں گریم الکمال ہیں کہ سرسل سن الجمال ہیں غنیم الخراج ہیں غریب النواج ہیں حریف الزکان ہیں راس الفکان ہیں کلنکن پرناس ہیں سمالت النواز ہیں اگنجل غنیم ہے رجائے کریم ہے سمالت الجبا ہیں کہ صاحب کرائیں کہ نرکن پرناس ہیں بیست النواز ہیں کہ سرول گوانا ہے میس الدروانا ہیں تمام التمیج ہیں سمالت العجیج ہیں برنگ پرمیس ہیں سمالت العدیس ہیں عدیس العلیخ ہیں میس الپیخ ہیں جمین الجماع ہیں میک الہما ہیں کریم الکمال ہیں کہ جرود جمال ہیں کہ جلنگ پرکاش ہیں کہ میں تو سباس ہیں کہ عجب سروپ ہیں کہ میں تو ببوت ہیں کہ میں تو بسائیں کہ آتم پروائیں کہ اچلنگ ننگ ہیں کہ میں تو بھنگ ہیں مد پار شند تب پرساد من من پرنام گن گن مدام ہر بریا گانجو ہر نر پر پانجو گن گن پرنام من من سلام ہر نر کھانڈو بر نر منڈ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਜਨ ਅਨਾਸ ਆਜਨ ਬਾਹ ਏਕ ਸਦਾ ਓੰਕਾਰਿਆ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਅੰਗ ਆਸਨ ਭੰਗ ਉਪਮਾ ਪਾਰਗ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉਦਾਰ ਜਲ ਸਲ ਮੰਡ ਦੇ ਸਵਿਸ ਭੰਡ ਜਲ ਸਲ ਮਹੰਤ ਦੇ ਸਵਿਸ ਮਹੰਤ ਅਨੁਭਵ ਨਾਸ ਦਰਦ ਦਰ ਦਰਾਸ ਆਜਨ ਬਾਹ ਏਕ ਸਦਾ ओंकार आदि कथनीय नाद खलखंड क्यालु गुरुवर काल कर कर प्रणाम जजर नाम अंश जिगात जजनवाद अंजन जिगात अंजवाद अंड भंडार अंड पार अडीठ धर्म अणबरण अतडीठ कर्म आण ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना चंद प्रसाद करणालया है अरकालया है कल खंडन है मैं मंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वंकर है सर्ववास है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगदेश्वर है मैं मंडल है कल खंड है परते पर है करुणा कर है जपा जप है थपा थप है कृता कृता मृत अमृत है मृत अमृत है करुणा कृत है कृता कृत धरणी धृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है रिप तापन है जप जापन है अकल अमृत अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृता मृत अमृत है जपा कृता मृत अमृत है निर्णायक है कल कायक है विश्वम पर है करुणालया है निर्भनायक है सर्वपायक है भवभंजन है कर गंजन है रिपापन है जब जापन है अकलंक है नी अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरदार है परमात्मा सर्वात्म है आत्मवास है जस के जास है नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग धाम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादिंग भूते

का शब्द रतन है ही रे जत जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा हे हुआ समाओ शब्द से ति मन मिलया सचे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनों दे बुझाए कहे नानक शब्द रतन है हीरा जत जड़ाओ शब्द सकता पाई कह करता आपे हुकुम बरताए हुकुम बरताए आप वेख गुरमुख से बुझाए तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन बसाए गौरमुख जिसनो आप करे सो होगा एक स्वयं बुलाए कहे नानक आप करता पे हुकुम बजाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्त्व सार न जानी तत्त्व सार न जानी गुरु बाजों तत्त्व सार न जानी तेही गुणी संसार परम सुधा सुत्या रहन बयानी गुर कृपा ते से जन जागे जना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कहे नानक सो तत् पाए जिसनो अन दिन हर लिव लागे जागत रहन बयानी माता के उदर में प्रतपाल करे सो क मनोवसारी है मनो कवसारी है बुढ़दाता जगन में आहार पहुंचावे उसनों कहे पो न सके जिसनों अपनी लव लावे अपनी लवे आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कहे नानक बुढ़दाता सो क मनोवसारी है जैसी अगन उदर में तैसी बार माया माया अगन सब एक जही करता खेद रचाया जाओ तिस भाणा का जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया हे माया जतार विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्ने विचे माया पाया हर आप मुल कह मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसै बिटो रहे लोक बिल लाए ऐसा सतगुरु जी मिले जिसनों सिर सौंपिया बिचों आप जाए जिसका जियो तिस मिल रहे हर बस मन आए हर आप मुलक है भाग जना के नानका जिन हर पल पाए हर रास मेरी मन बन जारा हर रास मेरी मन बन जारा सतगुरु दे रास जानी हर हर नच बजियो ला घट दिहाड़ी है तन तना मिलया जिन हर आप पाण कहे नानका रास मेरी मन हो अवन यारा ही रसना तू अंदरस राज रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए और तो कहता जे चर हर रस पल्ले न पाए हर रस पाए पल्ले पिए हर रस पौना तृष्णा ला गया ही हर रस गर्मी पाई है सतगुर मिले जस आए कहे नानक होर अंदरसा विसरे जा हर वस मन आए हे श्री राम मेरे हर तो मैं जोत रखी दादू जग मैं आया हर जोत रखी तुद बच दादू जग मैं आया हर आपे माता आपे पिता जन जी ओ पाई जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझिया तो चलत होवा चलत नदरी आया कह नानक श्रेष्ठ का मूल रचया जोत राखी दादू जग मैं आया मान जाओ भया प्रभाग में सुनया हर मंगल गाओ सकी रे मंदिर बनया हर गाओ मंगल न सकी दुख दुख न भया पे गुर चरण लागे जन सुभागे अपना प्रजा पे अन हत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कहे नानक प्रभाव मिलया कारण कारण जोगो हे श्री राम रिया इस जग में आए कह के आदत कर्म कमाया के कर्म कमाया तो श्री राजा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचया सु हर मन न वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखया पाया कह नानक शरीर प्रवान हुआ हो जन सतगुर स्यो चित लाया ए नेत्रो मेरे और तो मैं जो धरी हर बिन वरना देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहलिया हे बे संसार तुम देख दे हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा बेकार कहे हर बिन अवर न कोई कहे नानक नेत्र अंध से सतगुर मिले अंध अब रहट हो ये सुरबणो मेरे हो साचा सुनने नो बिठाए साचा सुनने नो बिठाए श्री लाए सुनो सतबाणी जत सुनी मंत्रा रिया वारसन रस बाणी साचा रख बड़ाणी दा की गद कही ना जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो साचा सुनने नो पठाई हर जियो गुफा अंदर रख गए वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पवन ना द्वारी प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए बाबनी एक ना दसवां द्वार दिखाया कह नेक रूप नाव नाम रिद दिसदा अंतर जाई पाया कहे नानकर प्यार जियो गुफा अंदर रख कहे वाजा पवन जाया ए सच सुहला सच कर गाव गाव सुहला कर सच सचवा सच त्यावे सचो त्यावे जद दुभावे गुरमुख जना बजावे ए सच सभना का खसम है।

0: प्रोग्राम FM रेडियो CIFK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Speak Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3875.

0: आत्मा बात से उसके को जाने पे हो नारता का दास है मोहल्ला पहला
1: कुंभे पता चल रहे जल बिन कुंभ ना होए
0: कुंभे पता चल रहे

पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना वे धर्म हाले आ उथे सच ही सच निबड़े चुन वस कडे जिर माले आ थाउन पहन कूड़े अर्मो काले दुर्गिता ले आ तेरे नायर ते सजण गए हार गए सिसगण वाले।

केते मचन केते नचे मंगते गढ़मड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में गड़े बाजार गावे राजे रानिया बोले अल्पताल लखटके के मुंडड़े लखटके के हार जित

पौड़ी बिन सतगुर के न पाए बिन सतगुर के न पाया सतगुर विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया सतगुर मिले आए सतगुर विचार है जिन सत्य सुन चित लाया

सब को पूरा पे हुए घटना कोई आखे हाथ प्रवाणा पिछे पाइए ता नानक तो लिया जापे महला पहला वधी सुवज नानका सचा वेखा सोए सबनी शाला मारिया करता करे सोए अगे जात ना जोर

0: जुग जुग फिर मिटाइए ज्ञानी बुझे ताए सतगुर संतों का धर्म के स्वभाव ते तेरा जते का जुड़ो के स्वभाव द्वापर से का सत के स्वभाव काल जुग रात गन का कूड़ के स्वभाव महला पहला
1: काम कहे चेतन स्वामी सत में असत रहे सब को सत मावे

खदाई अल्लाह पया नीर बस थले कपड़े पैर इधर कपठानी अमल किया चारे वेद हो इस जारे पढ़े गुणे तन चार विचार पाओ भगत करण इष्ट दाए कौन

0: सब को निवे हमको पर को निवे न कोए अर्थ राजू तो लिए निवे सबरा होए अपराधी दुणा निवे जो हंता मृगाए की सुनवाई है क्या थी है जा हृदय कसुदे जाए महला पहला
1: पाठ पुस्तक संध्या बाजंग सल पूज सबगल समाजं मुख झूठ मुखण सारंग त्रैपाल त्याल विचारंग गलमाला तिलक लला

मानस खाने करे निवास श्री उगैंतन गलताग शंकर ब्राह्मण पूरे नादो न प्यावे हो साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे हार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर मथे टिका तेर धोती का खाई हाथ श्री जगत का साई नील वस्त्र पैर हुआ प्रवान मलेश ताल ने पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना जमको पर किसना जाना देख है चौंका कड्डी का हरी उपराय बैठे कुड़ियार मत बेटा वे मत बेटा है अन्न साडा फिट है तन फिटा फिट करे

पापी सतन कटिया थुका पैया ते तजित मुख नाम उचरे बिन नाम सिखाए नानक एव जानिए तित मुख थुका पाए महला पहला।

पौड़िया पे ही करना की वो कला पे ही तारी है। देखा कि अपना घर कच्ची पक्की सारी है, जो है सो चल सी सब कोई आई वारी है। जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो बसारी है, अपन हती अपना आप ही का सवारी है।

पौड़ी नानक तंत न जापनी हरता के पारावार, आप कराए साखती फिर आप कराए मार, इतना गली जंजीरी आई पूरी चढ़ है बिसियार, आप कराए करे आप हों कैसे करी पुकार, नानक करना जिन किया

सेवक की ओड़क निभ ही प्रीत, जीवत साहिब सेव्यो अपना, चलते राख्यो चीत। परम सन्मान जो गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार कृपा रहमत सदका हफ्तावारी समागम दे विच हाजरियां भरन का सुभागा समा आपां नूं प्राप्त होया। अमृत वेल तो लैके गुरु की प्यारियां संगतां वल्लों अमृतमई बाणी दे कीर्तन दे नाल जुड़ के हाजरियां भरियां जा रहियां ने। आस्था की वार दे संपूर्ण कीर्तन तो उपरंत पावन पवित्र गुरबाणी दे शब्द आप जी ने सरवण कीते। अज आ जिहड़ा हफ्ता पूरी कौम उन्हां महान शहीदां दी याद विच जुड़ी हुई है।

तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राख हो राखनहार दयाला नानक करके गोले सतनाम।

माया ममता मोहनी जैन विण दंता जग खाया मनमुख खादे गुरमुख उबरे जिनी सच नाम चित लाया। माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया मनमुख खादे गुरमुख उबरे

मन मुख साधना पाया, ज्यों कसतूरी मृग न जाने, भ्रम दा परम भुलाया। अमृत ताज बिख संग्रह, करतै आप खुआया। गुरमुख बिरले सो जी पाई, तिन अंदर ब्रह्म दिखाया। तन